0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: പി ഭാസ്കരൻ വരികളെഴുതി, കെ രാഘവൻ ഈണമിട്ട്, എസ് ജാനകി പാടിയ ഗാനം, ചിത്രം അമ്മയെ കാണാൻ.

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ഡോക്ടർ ലവ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി നജീം അർഷാദും വിവേകാനന്ദനും പാടിയത്, രചന വയലാർ ശരചന്ദ്ര വർമ്മ, സംഗീതം നൽകിയത് വിനോദ് തോമസ്.
4: ആകാശം ദൂരെ എന്നതോ നുണയല്ലേ.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ഗാനമെഴുതിയത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, ഈണം നൽകിയത് എസ് പി വെങ്കടേഷ്, യേശുദാസും സംഘവും പാടിയത് ചിത്രം ജോണി വാക്കർ.

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं, सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ने से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: शनिवार है,
1: है,
0: आज सोमवार है,
1: है
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है। ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: देखा

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आजा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न है हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर
इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो, पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं, हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडे सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूं तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उसे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। और इन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने दो बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डूलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे वीबीएस के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूं। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूं। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात, मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूं, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहां क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा, वक्त को पहचानो। अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूं। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना, संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहाँ गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन, वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है, परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

एक याद ताजा की है, प्रेम की। आठवीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल, वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं। क्या बात है, ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के

उनके दर पे कबूतर बने हुए, जिस प्यार में ये हाल हो, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली
0: बस
1: है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार तो मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया है, मैं सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जैसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग, मुद्दत हो गई, जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था। मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारी व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है। क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन,
1: खास दिन है।
0: हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
0: हाँ।
1: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही है तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल, तो कथा सुधा जो हम आज सुनवाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का

0: जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई चार फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है? कौन है रे? रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहाँ तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया। काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दोगुना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
6: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन कैसे वो लेके चलते होंगे, हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग लगा
0: रहती है,
1: डोरी लगी
0: जिससे कि बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने,
1: अच्छा,
0: बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध

0: तो आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
1: कई
0: तो
1: संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
0: जी,
1: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा उस
0: करीब
1: वक्त के
0: पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, है ना। तो चलिए
1: हम करीब पहुंच रहे हैं
0: गीत के।
1: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले. स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे.
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए.
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं. बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है. और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूने, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है. और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं. और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा. तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे. और एक श्रोता कह रहे हैं कि

0: अनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
1: तो बस आप
0: ये मिठाई है नमकीन,
1: ये आप पढ़ेंगे
0: अभी पता लग जाएगा। तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, दो बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, दो कप ताजा दही हो, उसमें दो तीन बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में दो मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप जब बता रहे थे तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गांव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुपकर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: जो मोबाइल
1: शरारते कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे।
0: हाँ, लेकिन
1: टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल।
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी न कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल। और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।